0: बेशक मुहर्रम का महीना और करबला की जंग हुई थी, तो अगला कलाम है सलीम सुलेमान की आवाज में या हुसैन।
1: 60 हिजरी का हज भी अजीब था, हाजी जन्नत की तलाश में काबा जा रहे थे और जन्नत का सरदार इस्लाम बचाने करबला जा रहा था।

कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद।

जुल्म आज भी मौजूद है, बस चेहरे बदल गए हैं। करबला का मैदान आज भी दिखता है,

बेशक ये थे मरहूम शोहेब महमूद साहब, और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। खूबसूरत कलाम उन्होंने पढ़ा। यादें रहती है, लोग चले जाते हैं। अगला कलाम है कर्बला की शान या हुसैन।

बेशक जाने वाले को हम रोक नहीं सकते, रिश्ते समय मांगते हैं बहाने नहीं। जिसे रिश्तों की कदर होती है वो वक्त निकल लेता है, और जिसे नहीं होती उसके पास हमेशा बहाने होते हैं। अपनों के लिए समय निकालिए, क्योंकि एक दिन शायद समय होगा लेकिन हमारे अपने हमसे बहुत दूर जा चुके होंगे। इसी पैगाम के साथ मैं एक मैसेज पढ़ना चाहूंगी मेरी प्यारी बहन वहीदा की तरफ से, जो कहती है, ट्रस्ट एवरीवन इज वेल अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टूडियो ऑन वेडनेसडे द 24th। माय खाला फातिमा खान अली सेलिब्रेटेड हर 66th बर्थडे। इट इज सैड इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर, वंस मैटरनल आंट प्लेस्ड दैट रोल। फातिमा खाला हैज इन मोर देन वन वे अपहेल्ड दैट रोल। फ्रॉम माय माइंड टू माय हार्ट वाया माय लिप्स आई विश खाला द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अ लाइफ फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, खाला माँ का रूप होती है और वहीदा पा हम दुआ करते हैं उनके लिए, खुशियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनको खैर और बरकत और आफियत के लिए। इसके बाद आप सुनेंगे सुन ले पुकार, गंजे शक्कर पर मनकबत होगी। उसके बाद और एक गंजे शक्कर पे मनकबत होगी नुसरत फतेह अली खान साहब के आवाज़ में। फिर एक पैगाम होगा मेरा बादशाह हुसैन और सलामी साबिर रजा साहब की आवाज़ में। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन शब्बीर जेकब साहब के लिए, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी मुश्किलों को आसान करे और हर तरह से इसकी मदद हो जाए इंशाल्लाह। और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं, आपकी हौसला अफजाई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। फी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।